0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: दोहेरा सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुख दाए
0: ये सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए
0: एक कौम है यह एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धूआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धूआं सारी दुनिया

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, ये पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसो बरते ऐसे सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग पिठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी का है, किन्ना कि इहनां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गज के आ

करके मित्र जड़े सी आ करके जदों चरनी भी हाथ लाने तां भी पग गोड्या नूं जाके लग जांदी है। इस तरह गोड्या नूं लग के सुख मंगदे ने, सुख प्राप्त हुंदा है, तां लोग गोड्या नूं जाके पवित्र मंगदे होण करके ऐसा कर्म करदे ने।

0: ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ।
1: ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਸੁਪਤਨ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪੱਠੇ ਮੰਤਰ ਐ ਕੋਟ ਬਿਸਾਲਾ।
0: ਫਿਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਤਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਭਈ ਭੋਰ ਭੋਰ ਨਿਕਸਾਵੇ।
0: ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਕੀਤਕ ਬਾਸਰ ਇਦ ਬੇਕੀਨ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਹੋ ਸੁਣ ਲੈਣ।
0: ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜੋ ਸਨ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
1: ਅਜੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤ ਦਿਜ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ।
1: ਕਹਿਓ ਮਲੇਛਨ ਸਭ ਸਮਝਾਏ ਇਸ ਕੋ ਜਾਨੋ ਸੁਗਮੇ ਉਪਾਏ।
0: ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1: ਤਨਕ ਤਮਕ ਇਸੇ ਪਿਲਾਵੋ ਸਭ ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨਸਾਵੋ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਕਿਸੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਛੂਏ।
0: ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਤਜ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਤਾਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਮਦਰਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ।
1: ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਏ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਦਿਜਲੀਨ ਬੁਲਾਏ।
0: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
1: ਸਭਨ ਮਲੇਚਨ ਆਦਰ ਕੀਨਾ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਤਪੋ ਧਨ ਲੀਨਾ।
0: ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
1: ਕੰਚਨ ਕੋ ਹੁੱਕਾ ਬਨਵਾਇਓ ਦਿਜ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ।
0: ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੈ।
1: ਅਪਰ ਬਿਪਰ ਕੇ ਹੱਥ ਗਹਾਏ ਤਿਸਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਬਣਾਏ।
0: ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਹੁੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
1: ਰੇਖੀ ਪਿੱਖ ਕੈ ਸਭ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰਾ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।
1: ਭਲੋ ਕੇ ਬੁਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ੋ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਹੋਏ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ, मैं इन अंगीकार नहीं करता।
1: सुन कर जे मलेच्छ बुद्धवंते हित निर्दोख करने उचरंते।
0: सुन के जेड़े उत्थे मलेच्छ सी बुद्धवंते, बुद्धि तो किसी की हो सकती है। रावण बड़ा चलाक सी, हरनाक्ष भी बड़ा चलाक सी। बुद्धि वाला मलेच्छ अते बुद्धि वाला निर्मल दो प्रकार के बंदे ने। एक विवेक बुद्धि वाले गुरमुख होंदे ने, ये बड़ी बुद्धि वाले चलाक बंदे, चलाक किस्म के बंदे जेड़े ने। ये चलाक बंदियां ने इस नूं निर्दोष करन वास्ते इस तरह कहा।
1: सकल सभा को क्यों ना निहारे, मिल पीबत है स्वागत सारे।
0: कहने वा साडा दिमाग खराब है, आज सारे जाने पी रहे ने, सारी सभा पी रही है। एडे एडे साडे राजा साहब, वजीर साहब, छोटे वजीर साहब, वो इन्ने इन्ने वड्डे बंदे इनू चीज नूं पींदे आ। असी माड़े देखदे तैनू, असी भी तो यह कम करते ही। तो जे तू यह कम कर लेगा फिर तो राजपुत्री नाल तेरी शादी हुई है, राजे का जमाई है तू। ये कोई माड़ी चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बड़ी स्वाद चीज है। इस करके तेनू पी लेनी चाहिए है।
1: मैं दोष का लोका कंचन पावन को बनोका।
0: ये कहदा दोष है भाई, ये देख सोने का बनाया हुआ हुक्का किड्डा वधिया हुक्का है। सोना तो वैसे पवित्र मनिया हुआ, आ फिर गुड़ पाया विच पानी पाया, होर से की पाया दे च? वो तंबाकू बारे नहीं दस रहे कि तंबाकू भी पाया है।
1: गुलसन मिलियो बिपर ले आयो इत्यादक कह कह बिरमायो।
0: इस तरह सारे जाने जो कहन लग जान फिर बंदे नूं मनना ही पैंदा। कुछ बहुत पक्का होवे, जाल ठगा ने कह कह के कहने ए किधर चलिया भाई कुत्ता लैके, कहने नहीं ये लेला है। दूजे ने भी यही कहा ठग ने फरलांग ते वो खड़ा, कहने अज किधर लैके चलिया ये कुत्ता, कहने नहीं लेला है। तीसरा ठग भी कहना, चौथा कहना की गल कुत्ता चक्या होया। वो बंदा कहना मेरा ही दिमाग तो नहीं कितने खराब, चार जाने ने कहता तू कुत्ता चक्के मैं लेला समझदा, उन्हें सुट दिता वो। और चार ठगा ने चुक के बना लिया खा लिया। इस तरह ये जेड़े लोग बहु गिणती अज भी ने, 90% लोग ये खराब ने, 10% जेड़े धार्मिक व्यक्ति ने। लोग कहते वो असी पागल हैं जेड़े असी इन्ना कुछ करते हैं। वो इस करके क्योंकि हम 90 बंदे गलत ने इस वक्त दुनिया च, वो 90 बंदे की गिणती इन्नी भारू हो जाती दूजे बंदियां ते। कई बार धार्मिक व्यक्ति टबला खा जाता है कि ते नहीं तो नहीं पागल या मैं तो गलती ना होवां, क्योंकि सारे बंदे ये चीजा खाई जाते माड़िया चीजा। इस करके ये बंदे नूं भी इन्होंने ऐसे चक्कर च पाया। इत्थे तो 99.99% ही बंदे सारे खराब बैठे सी, सिखाए हुए सी। इस करके वो सारिया ने इनू प्रभावित कर लिया।
1: गए सबन के कीन सपान पई जामनी दिन जो बिहान।
0: कहने असी तैनू कुछ नहीं कहेंगे, बस माड़ा जा मूंह नूं ला के एक बारी धुआं जा छड़ दे, फिर तू भावें चलिया जाई। कह कह के मना के उन्हूं एक बारी मूंह नूं हुक्का लगा ही दिता।
1: कर जमीर सुता के गयो तथा मंत्र पट कर फिर भयो।
0: जो रात हुई तो उस वक्त अपने महलां दे विच ब्राह्मण गया, जो गया उथे बड़े मंत्र पढ़न लग्या।
1: बनियो न कोट मंत्र ने फुरियो विपर व्यसै कर पुन थिरियो।
0: इन्हें हुण अपने जानी मंत्र पढ़े, मंत्र कादे पढ़ने, हुण मंत्र गए के हुण मंत्र कित्थे रहिंदे कि टिके, जे तंबाकू पी लिया। जद करहत हो जांदी है सिख तो, सिख भी ध्यान करो, हुक्का हजामत हलालो हराम ये चार करहतां ने। नाले तो करहतां करी जाणगे, नाले कहणगे बाणी तो बड़ी पढ़ी है कोई फल तो मिलिया नहीं, तैनू हुण कहदा फल। जद भांडे च चार गलियां हो जाण उत्थे दुध टिकदा, एक गली कीती तां भांडे च दुध निकल जांदा। ये तो चार गलियां हो गईयां भांडे च। इत्थे इहने बड़े मंत्र पढ़े, बड़े हथ पले मारे, कुछ नहीं बनिया, सारे मंत्र ही फेल हो गए।
1: मिले अजमेर सुता निज अंग मैथन करो तिसी के संग।
0: तो हुण फिर उस राजकुमारी का जोर चल गया, ब्राह्मण उत्थे हार गया, अपने धर्म तो डिग पिया।
1: जगत झूठ मैं दोष बतेरा, करो बतावन प्रभो तिस बेरा।
0: महाराज कहने मैं थोन थोड़ी जिन्ना जिमें प्यो अपने पुत नूं बिठा के ना क्लीयर गल कर दिंदा, एवें लगो के जे करन वालियां गल्लां बाद च न्याणे बिगड़दे फिरन। अजकल दे युग विच वी ओह गल चलदी नहीं, न्याणे नूं सीधा ही मूंह ते उहदे कह दिओ बई आह गल इउं आ भाई, कल नूं सानू ना कही। महाराज ने बिठा के सारिआं नूं आपां नूं कहता ए तंबाकू च आह दोष ने, आह माड़े कम हो जांदे ने, कल नूं ना कहो, भावें तूं संग शर्म कर, भावें औखा हो सौखा हो, तैनूं इह गल मेरी सुननी पैणी आ। इउं सतगुरु ने आपां नूं सुणा दित्ती है, कहिंदे देखो ओह जिन्ना मर्जी करदा रिहा जतन, पर वह मंत्र मुंत्र दे सारे बेकार हो गए। इस करके भाई, क्योंकि सारे जिन्हें तंबाकू खा लिया उन्हें सारे जगत की झूठ खा ली, इसे करके इन्हां नूं जगत झूठ रखिया है।
1: धर्म हिंद को मंत्र समेत, कर्म विनाशन को बढ़ेत।
0: तो जो हिंदुओं का धर्म से हिंदू मंत्र वेदा के मंत्र ये तो केस कटाउण नाल भी हो जाते हैं खत्म। वो जदों एक राजा नंद की साखी सुनाई सी दसवें पातशाह ने, आप भुल गए हैं थोड़ी थोड़ी, याद भी करवा दिना मैं। महाराज ने पूछा सी सिंघां ने, महाराज हिंदू मत विच केस कटाने कित्थों शुरू होए ने? महाराज कहिंदे अज तो 2500 साल पहलां दी गल है, राजा नंद शूद्र राजा होया एक, उन्हें यह सोचा कि मेरा राज किते जिहड़े ब्राह्मण लोग ने अच्छे पवित्र केस रखण वाले कुछ नहीं खाण वाले साधुआं वर्गे लोग हुंदे सी पहलां अच्छे, किते मंत्र पढ़ के मेरा राज ही ना उल्टा देण। उन्हें कुछ लालची ब्राह्मण कट्ठे किए, कहना जिहड़े मंत्र जंत्र ने इन्हां दा हल दसो की आ भी चलण ना। वह कहिंदे जे बंदे दे केस कितों भी खंडन हो जाण ना, कट्टे जाण माड़े मोटे, तां इह मंत्र कम नहीं करदे। राजा नंद ने पहला उन्होंने कहा मैं तुहानूं पैसे दऊंगा जिन्ने कहोगे, पहला तुसीं केस कटा लो, फिर थोड़ा थोड़ा प्रचार करो। फिर इन्होंने की किया, सारे ही पंडतों के जबरदस्ती केस कट दिते, ताकि मंत्र ना चले। आपां शहर विच तां बड़े सेफ बैठे हैं, पिंडां विच इन्ना गलत प्रचार हो रहा है कि पिंडां दे सारे मुंडे केस कटाई जांदे। क्यों? विचे विच कोई ना कोई तां कीड़ा लग्गिया ही होया मगर, जिहड़ा उन्हां नूं केस कट्टण लई मजबूर करदा। इस करके जे ये चीजां अपने बच्चों तक पहुंचण, बच्चों नूं ज्ञान, तो बच्चे कहिंदे पिता जी तुसीं सुणाओ कथा, मैं तां टीवी देखूंगा, जां माता जी कथा सुण आउंदे, पिता जी आउंदे ने, जां दो चार बच्चे माड़े मोटे आ जांदे ने, उह जे सुणगे तां कोई असर पऊगा उन्हां ते? उह सुणदे नहीं है। इसे करके उन्हां नूं इन्हां गल्लां दा ज्ञान नहीं कि किन्नियां माड़ियां चीजां जिहड़ियां असीं वरतदे हां। तां कहिंदे ने भाई ये जिहड़ा है ना तंबाकू, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ਜੋ ਬਦਾਰ ਕਲ ਯੁਗ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਸੋਚ ਆਦ ਗੁਣ ਨਾਸ਼ਕ ਲਗ ਮੈਂ।
0: ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਚੋਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਬਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਆਦ ਗੁਣ ਨਾਸ਼ਕ ਲਗ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1: ਅਦਕੇ ਆਪਾਂ

करना की महात्म है। गली गली पौड़ी का महात्म नहीं दसते ने महाराज। सो साधन करने के तरीके नाल दसे हुए ने। संपूर्ण रूप दे विच जे कल्ला जपजी साहब ही रोज पढ़िया जावे तां हर प्रकार की चढ़दी कला बख्शिश करते ने महाराज। आओ जिस प्रकार प्रसंग बख्शिश कर रहे ने अगे श्रवण करते हाँ, रसना नूं करिए पवित्र प्यार सत्कार नाल गज के आख।

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्ने भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
1: जप तप नेचा नारा कर है देखत साज।
0: ना कोई जाप रहेगा, ना कोई ताप रहेगा, ना कोई निश्चा रहेगा। लोग ऐहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जे भरोसे ने वो टुट जाणगे, ते साजबाज जिहड़ा दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा प्रवृत्त हो जाणगे।
1: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
0: सो जिस प्रकार दी जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है, तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
0: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो, इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय दे नाल बैठा रहेगा बहुत कुछ हुंदा है, जिहड़ा निश्चय नाल बैठा रहिंदा जिन्हां दा निश्चा गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते है अंत नूं जित उसे दी हुंदी है।
1: वाहे गुरु ए मंत्र जप सगल करेंगे काम।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने बाकी कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं है, मूल मंत्र है, जप जी साहब है, फिर श्वास श्वास आखो।

0: इस गंध संगता दे विच शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी का नाम सी उन्हूं स्कंद भी कहिंदे ने उन्हें पुछया सी कि पिता जी ये तुसी बूटी तो मना क्यों करदे हो भी नेड़े नहीं जाना देखनी नहीं बड़ा सख्ती नाल ताड़ना करदे हो ये बूटी च ऐसा की नुक्स है जी।
1: स्कंद पुछा हे पिता जी जगत झूठ क्या निंद।
0: तो स्कंद उहदा नाम सी कहण लग्या पिता जी ये जिहड़ी जगत झूठ है इहदी इन्नी क्यों निंदा करदे ने सारे माड़ा क्यों कहिंदे ने।
1: कल युग कैसे वरतीए एक इन कीन मनिंद।
0: कल युग विच किवें वरत गया है यह तंबाकू दोने सियाने सन पाड़े तो भाव पढ़े लिखे भी हो सकता है इस करके कहिंदे बड़े सियाने इन्होंने महाराज नूं पुछया ये आप जी को आए शरदा नाले प्रसंग सुनिया तंबाकू का भी ये तंबाकू महाराज जी मना क्यों करदे हो इहदे विच की ऐसा पाप है गुनाह है।
1: श्री सतगुर बोलत भए मेरी बात परतेत।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरी गल दे उत्ते हुण प्रतीत नहीं आई भरोसा करो तुसी हिंदू धर्म नाल संबंध रख के सुल्तानिए पीर नूं मंनदे हो इस करके तुहानू तुहाडे ही धर्म दे विचों सुणाउने आ कि किन्ना माड़ा है तंबाकू।
1: स्कंद संगता शिव कहे कथा भविख तरेत।
0: इह स्कंद संगता दे विच शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी का नाम सी उन्हूं स्कंद भी कहिंदे ने उन्हें पुछया सी कि पिता जी ये तुसी बूटी तो मना क्यों करदे हो भी नेड़े नहीं जाना देखनी नहीं बड़ा सख्ती नाल ताड़ना करदे हो ये बूटी च ऐसा की नुक्स है जी।
1: स्कंद पुछा हे पिता जी जगत झूठ क्या निंद।
0: तो स्कंद उहदा नाम सी कहण लग्या पिता जी ये जिहड़ी जगत झूठ है इहदी इन्नी क्यों निंदा करदे ने सारे माड़ा क्यों कहिंदे ने।
1: कल युग कैसे वरतीए एक इन कीन मनिंद।
0: कल युग विच किवें वरत गया है यह तंबाकू दोने सियाने सन पाड़े तो भाव
1: पुरख वाज गोमेद कयो औखद दे सिद्ध तूर।
0: ओ जेड़ा मुनि बैठा सी उने इनू कहा जमेर शाह नू चंगा हुण तेरी तपस्या बहुत हो गई है तू गोमेद जग कर गोमेद जग पछम विच जाके कर। तो इने इनू प्रेरित कीता कि जिथे गोमेद जग होवेगा क्योंकि ए जग कलयुग विच नहीं करीदा यह सतयुग का त्रेते का ही जग है इन्हें जान बुझ के जग करवाया भी जिदे च गऊ की बली दिती जाती है जिथे फिर गऊ मरती है कलयुग च उथे तंबाकू पैदा हो जाता क्योंकि गऊ हत्या के तुल होने करके। उस ऋषि ने इनू कहा अजमेर शाह कहना जे तू ए बूटी ग्रहण कर लेंगा ना यह बूटी दुनिया के राज करवावेगी तेथों फिर इस करके पहला यह बूटी तैयार कर।
1: पश्चिम गोमेदी धरन सिद्ध खाल ते ले आए।
0: जदों ये गया फिर उथे अजमेर शाह पछम दिशा विच जिथे गोमेद जग होया सी फिर काफी देर बाद उथे उस हवन कुंड विच एक बूटी पैदा हो गई ओ बूटी तंबाकू है जिथे गऊ मार के इन्होंने गोमेद जग कीता क्योंकि कलयुग दे विच ओ जग करना मना है समय समय की गल है इस करके जदों उथे बूटी पैदा हो गई क्योंकि साधु ने यह गल कही मुनि ने उन्हें की कीता खाल का मतलब हुंदा ऊठ ऊठां दे उत्ते बूटी भर के कितनी सारी हजारां दी गिणती विच ऊठ भर के ए बूटी हिंदुस्तान दे चो अजमेर शाह लै के आया।
1: या आए प्रगट कियो वदी मले चींदाए।
0: हुण इत्थे लिया के ने प्रगट कर दित्ती मलेच्छां दी गिणती वध गई जिहनूं देखे उहनूं ही प्यारिया करे जिहनूं देखे उहनूं ही प्यारिया करे तंबाकू की वरतों हौली हौली होनी तंबाकू का असर बड़ा सीधे ढंग ही है भी बंदे नूं नशा हो जाता लोग बड़े खुश भी आ तां बड़ा सोहना सिर जिहा घूमदा दिमाग जिहा खराब हो जाता सारी दुनिया नूं जिवें शरारत जां आप शराब का नाम देखिए की है शर आब आब कहिंदे पाणी नूं शर कहिंदे शरारत नूं इह भी शरारत का पाणी हुंदा सी पहलां जिवें किसे नूं प्यार दे उह शरारत करदे सी लोग इसे तरह तंबाकू तंबाकू भी एक शरारती बूटी है ते शरारती बूटी लोगों नूं खवा के इन्हें उन्हां लोगों नूं अपने बंदे बना लिया जिन्हों तंबाकू देवे उही इहदा बन जाए

भक्ति है, एकाग्रता बख्शे हो, दूसरी समझने की कोशिश करो, कई अनुभव दस्यो कि जो असि यदा अर्थ किया भी यह वचन असि गुरु साहब नू कहा, चलो मनिया गुरु साहब नू कहा जी करो बेनती सुनो मेरे गीता आप गुरु साहब नू कहा, मगर अगला अर्थ की करोगे कि गुरु साहब नू कहना चाहते हो कि संत तैल की बेड़ा है, इहा खाड़ चलो हर लाह आगे बसन, गुरु नू तुसी हिदायत कर रहे हो कि इथे खटो जी अगे तुहाडा सुहेला हो, एक मिनट नहीं आखो सतनाम श्री हुण सचेत हो, आ मेरी भैन बोली जे पिछो एक ने आवाज दी मन नू, ए आवाज मन नू मारी है सुते हुए मन नू, पकड़ो जरा बचन ते बोलो किनू आवाज मारी, औद कटे दिल सुनैना रे मन रे, नहीं अगे ना ना करो पहलो आवाज मारन वाले नू सामने खिला लो किनू आवाज मारी रे मन रे मन, मेरा मना मैं तेन मित्र बना के एक आवाज मारदा, सौन का वेला नहीं हो संत टहल की बेड़ा, पता लग पले पिया कुछ किनू आवाज मारी, औद कटे दिल सुनैना रे मन मना, उम्र घटती जाती है गुरुवाला बन गोर मेल, अगे तो बोलते इन्होंने बोलो गोर मेल, अजे मिले हो किन्ने मिले हो किन्या ने गल में गत रहे किन्या खंडे बाटे का अमृत छके, जेडे खंडे बाटे दे अमृत अजे जिन्ना नहीं छके अजे गुरु नू मिले नहीं, गुरु वाले बने नहीं, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह पिता जी कहते गोर मेल गुरु वाला बन, आखे जी गुरु वाला बन के की करा, कहते काज सवारे काज सतगुरु वाला बन अपनी जिंदगी दे असली मकसद नू सवारला, जेडे काम लई आया गोविंद मिलन की के तेरी बरिया उस काज नू सवारला, मैं बेनती करदा तेनू करू बेनती, मैं तेन दुश्मन नहीं कहिंदा, सुनो मेरे मेरे मन मित्रा सुन, उठ अमृत वेला संभाल गुरु वाला बन सिमरन कर बंदगी कर, ते इहा खाड चलो इथे सौन दा वेला नहीं हो, इथे तू व्यापार करन आया है इथे कुछ कमाउन आया है, कमाउन गया बंदा सौ जावे ते सारे पैसे खर्च के घर नू रोंदा मुड़ाउंदा है, तू भी रोंदा ना मुड़ जवी रब दे घर नू, उठ गुर मिल काज सवारे गुरु दे चरणा नाल जुड़, अपनी जिंदगी दे मकसद नू सवार ला, सतगुरु कृपा करन तुहानू मेनू सारे नू कदों बख्शन, चौंकड़े मारो जेड़े कारजली मनुख अज नू मिलिया है, सतगुरु कृपा करे तुहाडा ते मेरा मेरा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी सवार देन, सारे ही जपो चौंकड़ा मार लो एक मन एक जित हो जाओ, ते सिमरन करन लग्या मन की एकाग्रता इतना बनाउनी है, परसों चौथ मस्कीन साहब कथा करते करते कह रहे सी आखो वाहेगुरु, कहते जो मुंह तो वाहेगुरु आखी दा है वह रोटी पकाई दी है, वह रोटी के बोलो ना वो रोटी जो मुंह तो आख्या ना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जो आप करते रोटी ढो तो ना लग बेटो सीधे होकर बेटो रोटी पकाई दी है, ये रोटी खानी नहीं है जे खाधी नहीं है, खाधी कदों जाती वो बचन करते कहते खाधी उदों जाती है जो इथो पकाइए तो कन्ना तो सुनिए, इधरों वाहेगुरु वाहेगुरु आखी जाइए तो कन्ना राही सुनी जाएगी फिर अंदर चल जाती, जिन्हें मुंह तो आख्या कन्ना तो सुनिया उन्होंने भुख मिटी आनंदित हो उठे हो जी, अजे केवल आप रट करना है कन्ना ना ही सुनना कन्ना नाल विचारा किसी अंदर होर चलन दिया, मुंह तो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो रहा, हुण तुहानू मेरी तुहाडे चरणा ते मस्तक रख के गुरु गोबिंद सिंह दे कुकर की बेनती है, बड़ा सोहना माहौल है गुरु की गोद विच बैठिया, कोई बाहर का शोर शराबा नहीं ट्रैफिक का शोर नहीं, मन टिक सकता है रंग लग सकता है, गुरमुख प्यारे चौंकड़े मार के इथे हथ रखो वाहेगुरु नूं मुंह च वाखियो ते कन्ना तो सुनियो, गुरु तुहाडे ते बख्शिश करे मेरे ते बख्शिश करे वाहेगुरु।

हर जस रे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सिंह हद नी लगायो काल फास जब कर करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगायो पाप करत सुखच्यो नहीं ने कर बनवारियो जे विद गुर उपदेश आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेश ध्यान दियो जे विद गुर उपदेश आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक

0: जी बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विचो चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आं, उस तरह श्राद्ध करवाउने आं, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

वाहे गुरु। आओ जुड़िए सतगुरु दे चरणा नाल। मेरा साहब कृपा करे ए जिहड़ियां घड़ियां आपां नूं नसीब होईयां ने झिम झिम अमृत वरसदा। एक थां ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने ऐसा वरिया ऐसा वरिया ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। ऊनम दा मतलब हुंदा है नीवा नीवा। जदों बदल सावण दे भादरों दे महीने विच झड़ियां लगदियां ने ते गुरमुख प्यारे बदल ए लगता जी कोठियां दे नाल लग गया। आखो सतनाम श्री। इतना हुण आपां नूं नाम जपदियां नूं लगदा सी कि गुरु साडे कोल आ गया। ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। नीवा नीवा बदल बन के गुरु कोल आ गया ते वरसे लाए झड़ी। वरसे लाए झड़ी लगी। वेखी ना कई बार सत सत दिन अठ अठ दिन नौ नौ दिन फिर बदल हटन दा नाम ही नहीं लैंदा। पंद्रह पंद्रह दिन पानिया वटा बन्ने तोड़ के लै जांदा है। झड़ियां ला के वरस पैंदा है। इसे तरह मेरा सतगुरु मिलकर कृपा करे ए जेहड़े तेरह चौदह दिन अपने बाकी ने झड़ी ला के सतगुरु वर जावे। वाह।

0: एवं गुरुपद साद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी सच
0: जुड़ के आखो जी आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर। कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास। इनू फाइया लैके जेडे फंड वाले ने, वह मेरे सतगुरु ने लिखिया वा पंजा ने, लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आने वाली सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरिया आ गई जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तो बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार छपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ। तत्ती वाओ ना लगे ही कदों, जदों पार ब्रह्म शरण आई। इहदी शरण विच आ जाओ। सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए हां, असीं भी गुरु नानक दा पल्ला छड़ दिंदा। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनिया अनेरिया आ रही ने उड़ा के लै जाणगिया, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इनी अग दी अनेरी आ रही उड़ा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते अनेरिया तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने, कई बंदे सोचदे कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाणा पीणा हसना सौणा बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, ये दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डे खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार विच लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तो बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझण लग पणगे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखता ही लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन दा करन नूं बहुत दिल करदा फेर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया है ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलने लगा है। हां जी
1: कल साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यों पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब।

लय तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाजपत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर करमणे हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नु याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छड़ाया, खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छड़ा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छड़ा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छड़ा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया, फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ

0: सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी तै पवा नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू महाराज मैं नमाणी आ मेरा कोई मान नहीं साची लेवे बिन ए नमाणिया दे महाराज तेरे चरणा विच टह गई आणके इनू शब्द बख्शे शब्द लाग सवारिया इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिहदे नाल इहदा जीवन सवर जावे ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने मैं ते भुल्या रहा कि जे किते तह पिया नीवा हो गया धरती ते मत्था टेकिया खुदा नू नमस्कार कीती ते किते मेरी चिट्टी पग ना मैली होए।

0: ही सत्य जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगुच सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले
1: बुलाया तेरा
0: ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी साध संग नानक

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पहनान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह की बाणी सरवण की, नितनेम साहब सरवण किया है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

रात मुकदी सब मुकदी चली रैण सब मुकदी चली रैण सब मुकदी सतगुरु नूं पुछो ए गरीब नवाज ए दुनिया दे स्टोर विच असीं की खरीदण आए हां असीं की लैण आए हां साडे आउण दा इत्थे मकसद है की स्टोर लैणा सी केवल साडे जीवन दा इन्ना ही मनोरथ सी कि असीं इसे आण के अमरीका दा वीजा लग जांदा स्टोर लै लैंदे कारोबार खोल लैंदे केवल साडा एहो ही मकसद आ मेरे साहब कहिंदे नहीं उह भोलिया इह ते दुनिया दी किरत रोजगार मेरे मालक ने चलाया है तेरा कोई सौदा हो रहा जेड़ा तू लैण आया है मेरे साहबा मैं ते दुनिया दे खेल तमाशे च भुल गया मैं की लैणा है चेता कराओ ते साहब चेता कराउंदे

0: देखत साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहेबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालियां चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईयां चिट्ठियां लिख ते उना दे विच दोखी ते लिखे ने उना दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तैनू आ बेनती कर दी मैं तैनू आ बेनती कर दी जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़े कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईयां फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां भी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े बच्ची सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते भाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ लू पांच साल की बच्ची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां लई मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेमुख हुंदा जांदा ही मेरा कहण दा मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहेबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखा दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछीउ इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रहे विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गलो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे हाय
0: हाय हाय
1: सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म